0: एक आर्टवर्क को, क्योंकि एक तरह से तो आर्टवर्क ही है उसका म्यूजिक जो है, तो वो अपने आर्टवर्क को कैसे जस्टिफाई करवा सकता है, अपने उन लिरिक्स को, अपनी उस मेलोडी को, अपने वोकल्स को कैसे जस्टिफाई करवा सकता है कि इन द एंड ऑफ द डे लिरिक्स जो है वो भी अपनी जगह पे अच्छे आ रहे हैं, मेलोडी भी अच्छी आ रही है, वोकल्स भी अच्छे आ रहे हैं, एंड इट्स अ गुड आर्ट पीस इन जनरल. तो वो उनके लिए क्या एडवाइस है एक नए प्रोड्यूसर के लिए?
1: यार नए प्रोड्यूसर के लिए मेरी यही एडवाइस है कि बेसिकली सीखना पड़ेगा. फर्स्ट लर्न देन क्रिएट.
0: राइट.
1: ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू कंपोज. ठीक है.
0: राइट.
1: ठीक है, लिरिक्स अगर आपको मिले हैं, अगर आपके अगर कोई लिरिसिस्ट है तो बेसिकली उसको भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या सिचुएशन मिल रही है. होता है ना, आप किसी नए बंदे के पास, या कोई अगर काम कर रहा है उसके पास कोई प्रोड्यूसर आया, डायरेक्टर है, उसने आगे बताया कि यार मेरे जो मूवी है उसमें एक ये सिचुएशन है, सैड पार्ट है, इसमें ये हुआ दिस एंड दैट, और इसके अंदर मुझे एक सॉन्ग चाहिए.
0: ठीक है,
1: ये सिचुएशन है. वो लिरिसिस्ट ने उसको सोचा कि यार अच्छा यहाँ पे ये सिचुएशन है. ठीक है, उसने लिखना शुरू किया उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, वो गाना आया कंपोजर के पास, कंपोजर को भी सिचुएशन बताई गई कि यार ये सिचुएशन है यहाँ पे, यहाँ उसने बेसिकली उस चीज को अडॉप्ट किया कि यार ये कहना क्या चाह रहा है.
0: ठीक है.
1: ठीक है, वो अडॉप्शन से उसने फिर उसको क्रिएट करना शुरू किया. अब ठीक है, अब एक सैड सिचुएशन है तो वहां पे मैं हार्ड रॉक गाना दे दूंगा तो फिर वो ऑडियंस जो बैठी होगी कि यार ये क्या हुआ, पागल है क्या कर रहा है बेसिकली सेंस.
0: एग्जैक्टली.
1: नए प्रोड्यूसर की जो आपने बात की है ना, ये कर के आता है काम, सीख के आता है. एकदम से कोई कंपोजर नहीं बन जाता, एकदम से कोई लिरिसिस्ट नहीं बन जाता, ना म्यूजिक प्रोड्यूसर बन जाता.
0: हिट एंड ट्रायल है.
1: हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता से कुछ. आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर 100% अगर देखे में से अगर हम देखें तो 90% सिंगर्स की अपनी कॉम्पोजिशन होती है. ठीक है, उन्होंने पहले से बना के रखी होती है कॉम्पोजिशन सारी. ठीक है, कब से एक ही कॉम्पोजिशन को लेकर बैठे रहते हैं, पता नहीं कितने सालों में वो कंपोजिशन, वो उसमें कुछ नया ऐड कर लिया, कुछ कर लिया, स्टेप बाय स्टेप वो चीज डेवलप होती रहती है. ठीक है, तो इसकी सेंस आहिस्ता आहिस्ता आती, बस लगे रहें, मेहनत करें और प्रॉपर म्यूजिक को सीखें. ठीक है, किसी से अच्छी तालीम लें, अच्छे टीचर से सीखें, ताकि आपको पता हाउ ना होनी चाहिए म्यूजिक की, फिर उस स्टेप बाय स्टेप. और जो मैं आपने भी बात की ना, कंपोजर और ये लिरिसिस्ट, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है. मैं आपको जबरदस्ती कंपोजर नहीं बना सकता. ठीक है, आप मुझे जबरदस्ती लिरिसिस्ट नहीं बना सकते.
0: वो जो हम बात करते हैं कि उतरती हैं ये चीजें,
1: ये बेसिकली ना म्यूजिक बेसिकली क्या है, म्यूजिक हवा में. ठीक है ना, वो क्रिएटिविटी एक हवा में है म्यूजिक, हम उसको फील कर रहे हैं. हम ये तो नहीं कह सकते म्यूजिक पड़ा हुआ, कौन कह सकता है, म्यूजिक हवा में, हमने उसको फील किया है. म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको एक गाने की सिचुएशन मिली. ठीक है, अब वो गाना था पहाड़ों पे, वो इस तरह का कुछ, यानी हीरो हीरोइन जो है वो पहाड़ में इस तरह गा रहे हैं. अब उस म्यूजिक डायरेक्टर ने क्या किया, उसने कहा कि मैं, मुझे अगर गाना बनाना है तो मुझे उसी जगह पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं वहां का एनवायरनमेंट मुझे मिलेगा नहीं ना, तब तक मैं ऐसी चीज क्रिएट नहीं कर सकता. वो म्यूजिक डायरेक्टर वहां गए, उन्होंने वो जाके फील की सारी चीज और वहां बैठ के कंपोज किया.
0: जैसे हम फिल्म में इम्तियाज अली की बात करते हैं,
1: देख लो,
0: तो वही वाली चीज है. इट्स ऑल अबाउट कैसे हम आर्ट को परसीव करते हैं और उसको कैसे हम फील करते हैं. तो आई गेस द जिस्ट ऑफ इट इज के जो भी आपने प्रोड्यूस करना है, जो भी आपने बनाना है, उसमें सबसे पहले खुद उसमें इन्वॉल्व हों, खुद उसमें डाइव इन करें.
1: बिल्कुल,
0: और जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपके काम में आपका अपना आप ही शोकेस
1: नहीं
0: होगा.
1: बिल्कुल,
0: दैट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग. एंड इसी पॉइंट पे मैं इस एपिसोड को एंड भी करना चाहूंगा ऑन दिस वंडरफुल नोट के एक गाना जो है वो ऑल इन ऑल इट्स यू. आपका एक गाना वो आपकी ही एक रिफ्लेक्शन है कि आपके अंदर किसी भी चीज को लेके क्या फीलिंग है. तो इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू इन द स्टूडियो विद अस टुडे सर. आपके साथ, एज आई टोल्ड इन द स्टार्ट एज वेल, कि मैंने 7 साल तो आपके साथ एज ए स्टूडेंट गुजारे हैं, एंड उसके बाद से आई हैव हैड अ वंडरफुल ब्रदरली बॉन्ड विद सर तैमूर वजीर. इट वॉज लवली हैविंग यू सर इन द स्टूडियो.
1: थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ये स्टार्ट किया रेडियो, और बड़ा अच्छा आप कर रहे हो, और गुड लक, ऐसे ही करते जाओ. और बाकी जितने भी नए बिगनर्स हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स हैं, जितने भी हैं, वो जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं सबको ये सजेशन है कि बस करते रहो, रुको मत.
0: वंडरफुल,
1: ये बस चलते रहो, बस
0: वंडरफुल. एंड आई होप के जितने सुनने वाले हैं वो इस आखिरी दो जुमलों को तो कम से कम अपने दिल में रखेंगे.
1: हम लगे रहे, स्टार्ट किया था ना यार, हम भी लगे रहे थे बिल्कुल, हमें इतना वो था, अभी भी स्ट्रगल ही है, स्ट्रगल ही फेज ही चल रहा है अभी, वो तो ये चलता रहता है.
0: On that wonderful note, I would like to end this episode. आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर कहानी, only on FM 92.6 UCP की दुनिया. This was your host, Horib Shams, signing off. खुदा हाफिज़.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: when you are off.
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: बोरियत को भगा दो।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान, FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: जी तो सामिन, हम वापस आ चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा अभी तक। सर, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल निज़ाम और पार्लियामेंट्री निज़ाम पे। सर, अभी मौजूदा वक्त में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सदर के पास जमहूरी निज़ाम में रहते हुए क्या क्या अख्तियारात हैं?
4: देखें, 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सदर के पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं, यानी कि वो एक टाइटलर हेड के तौर पर है। जिस तरह से ब्रिटेन में ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट के वजूद के बाद जो है वो जो क्वीन है या किंग है उसके पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं। जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट्स जो हैं वो डिसीजंस लेती होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में हुआ कि जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो हमेशा बिल जो है वो इनिशिएट होता है पार्लियामेंट से, वो फिर साइन होता है, उस पर डिबेट होती है पार्लियामेंट में, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो दोनों हाउसेस से उस बिल को मंजूर करते हैं, फिर वो बिल जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जाता है फाइनल सिग्नेचर के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सदर जो हैं वो उसमें कुछ तब्दीली जो है वो रिकमेंड करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बिल को उसी तरह से मंजूर कर देते हैं। तो एक उनके पास सबसे बड़ा इख्तियार ये है कि जब बिल जो है वो लॉ बनने लगता है तो उस प्रोसेस की जो कंप्लीशन है वो विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होती है। लेकिन इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर दो रिपीटेशंस के बाद बिल जो है वो सदर पाकिस्तान से अप्रूव नहीं भी होता और हाउस उसको दूसरी तीसरी दफ़ा जो है वो अप्रूव कर देता है तो वो बिल लॉ बन जाता है। दिस शोज़ कि आपकी जो पार्लियामेंट है इवन वो लॉ बना सकती है अगर सदर का उस पर सिग्नेचर भी ना। उसके अलावा सदर के पास जो इख्तियारात होते हैं वो एक सबसे अहम अख्तियार है जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता होता है। ऑर्डिनेंस जो है वो एक एमरजेंसी लॉ होता है जो कि उस वक्त बनाया जाता है जब पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होती और किसी अहम मामले के ऊपर आपको लॉ मेकिंग की ज़रूरत हो, तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो थोड़े अरसे के लिए जो है वो लागू होता है। उसके बाद अगर उसको पार्लियामेंट रिकग्नाइज या एक्नॉलेज नहीं करेगी तो वो लॉ नहीं बन सकेगा। तो प्रेसिडेंट के पास दूसरा सबसे बड़ा अख्तियार ये है कि वो इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जो कि उस वक्त के लिए लागू होता है। जो तीसरा सबसे बड़ा अहम जो अब उसके पास इख्तियार होता है वो है पार्डन या रिप्रीव का, यानी कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसको कोर्ट्स की तरफ से सज़ा हुई हो वो सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी तक भी हो सकती है, उसकी एक एप्लीकेशन जो है वो सदर पाकिस्तान को अगर फॉरवर्ड की जाए और उसमें वो माफ़ी की दरख्वास्त करे सदर को, तो सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको माफ़ी दे देता होता है। इसको पार्डन या रिप्रीव कहा जाता है, यानी कि आपके शहरियों में से कोई एक शहरी जो है अगर वो किसी गुनाह का किसी जुर्म का मुर्तकब हुआ है तो उस जुर्म में जो है वो जब उसे सज़ा हुई है उसकी माफ़ी देना जो है वो सदर के इख्तियार। इसके अलावा ये है कि जब खारजा अमूर डिसाइड हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी सदर का किरदार होता है। जब सेरेमनीज़ हो रही होती हैं या हेड ऑफ़ स्टेट आपको विज़िट कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपने उन्हें वेलकम करना होता है, तो ये सेरेमोनियल्स जो हैं वो कुछ रोल्स होते हैं जो सदर को परफॉर्म करने होते हैं।
3: सर, अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि जमहूरियत निज़ाम में क्रैक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। सर, वो किन किन इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे थे कि जिनका रोल बहुत अहम है?
4: देखें, दो तरह के इदारे होते हैं किसी भी एक रियासत में या जमहूरियत में। वो दो इदारे जो हैं एक गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे होते हैं पैरेलल, जो कि उतने ही मजबूत होते हैं जितना के सरकारी इदारे होते हैं। क्योंकि हमारा फोकस जो है वो रियासत के ऊपर है तो हम सरकारी इदारों की बात कर लेते हैं। हकूमती इदारे जो हैं वो थ्योरेटिकली तो जो है वो तीन इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जो कि एक रियासत को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इज़ टू फॉर्म लॉज, वो कवानीन बनाते हैं और उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए आपके पास एक दूसरा इदारा मौजूद है जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहा होता है, जिसको एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। अब एग्जीक्यूटिव जो है उसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक ब्रॉडर सेंस में और एक नैरो सेंस में। ब्रॉडर सेंस में फ्रॉम लाइक प्राइम मिनिस्टर टू पटवारी जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। नैरो सेंस में ये किया जाता है कि इसमें डिस्टिंक्शन की गई है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर और होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और होते हैं। एग्जीक्यूटिव स्टाफ वो होता है जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो होता है जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं। सो बुनियादी जिम्मेदारी जो है यहाँ पे वो लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले इदारों पे आती है जिन्होंने इन्फोर्स करना है। लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, उसके अलावा मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद द सिविल मैटर तो आपको लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स जैसे इदारों से सामना करना पड़ेगा, और अगर तो आप जो हैं वो किसी क्रिमिनल उससे डील कर रहे हैं तो आपको पुलिस और इस जैसे इदारों, दे ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो तीसरा और सबसे अहम इदारा है जमहूरी मुल्क में वो है जुडिशरी का, जिसे अदलिया कहा जाता है। इसका बुनियादी काम कानून को नाफिज होने के प्रोसेस के दौरान जो इंसाफ है उसके तकाजों को मद्देनज़र रखना है, और साथ ही साथ जो है वो कानून की इंटरप्रटेशन करना है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कवानीन जो हैं वो बड़े एम्बिगुअस होते हैं, जब वो बन के आते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, जिसमें जो जुडिशरी है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये बनती है जजेस अपनी बसात और अपनी प्रूडेंस के मुताबिक जो है वो इंटरप्रटेशन करते हैं लॉ की, और उसको किसी स्पेसिफिक केस के ऊपर लागू करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कानून मौजूद ही नहीं होता, तो उसमें जो है वो इक्विटी के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए वो इंसाफ मुहैया करते हैं। तो हकूमती इदारों की अगर बात की जाए तो यही तीन इदारे हैं जो कि एक रियासत को चलाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। आज की जो मॉडर्न स्टेट है उसमें ये कहा जाता है कि एक चौथा इदारा भी एस्टेब्लिश हो गया है जिस पे उतनी ही जिम्मेदारी आयद है जितना इन तीन सरकारी इदारों पे है, और वो मीडिया है। मीडिया को भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है एक जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए जितना ये तीनों इदारे हैं।
3: जी सर, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सर, हारजा पॉलिसी एक जमहूरी रियासत को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अपनी हारजा पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी अपना रिलेशन ठीक बना सके और अपनी आवाम के साथ भी अपना जमहूरी प्रैक्टिस कर सके?
4: देखें, पहले इसके कि हम फॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी जो है उसका आउटकम्स को देखें कि कितनी इफ़ेक्टिव वो पॉलिसी हो सकती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस तरह का है। इस प्रोसेस में कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से मुहरकात हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी क्या होगी। बहुत से स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि इसमें आपके इलेक्टेड ऑफिशल्स के साथ साथ आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका इवन के जो रोल ऑफ पर्सनैलिटीज़ है, यानी कि आपकी खारजा पॉलिसी को ट्रांसलेट करने के लिए जो आपका इलेक्टेड स्टाफ है या जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनका सोचने का मायार क्या है। क्योंकि अब तो जो है वो 1960s के बाद ऐसा हुआ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने और न्यूरोसाइंस ने ये देखना शुरू किया कि एक इंसान कितना रैशनल सोचता होता है और कितना इरैशनल सोचता है। क्योंकि रियासत की जो खारजा पॉलिसी है वो अफराद बना रहे होते हैं, फ़र्द जो हैं उसका हिस्सा होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फ़र्द जो है वो सोचता कैसे, उसके जहन का कितना हिस्सा जो है वो मंतकी लिहाज से सोचता होता है और कितना हिस्सा जो है वो इमोशनली सोचता होता है। सो दुनिया में हमारे पास कई ऐसे खारजा पॉलिसी के आउटकम्स हैं जिनमें प्रोसेस के दौरान ऐसे अफराद जो हैं वो शामिल थे जो कि जहनी लिहाज से ज़रा इमोशनली सोचते होते थे, या उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी। अगर इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ पुटिन, रशिया की अगर हम एग्जांपल लें तो ही इज़ अ मिलिट्री मैन और वो मिलिट्री की तरह सोचता है। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मिलिट्री मैन टू बिहेव डिप्लोमेटिकली? अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक इंसान है, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है, तो जब वो फॉरेन पॉलिसी बना रहा होगा तो हमेशा अग्रेसिव मींस को इस्तेमाल कर रहा होगा किसी भी मसले का हल निकालने के लिए। और एक बंदा है जिसने, या एक फ़र्द है जिसने जो है वो उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है उसने डिप्लोमेटिक वे से जो है उन चीज़ों को हल करना है, ये एक अहम फैक्टर हो सकता है। सो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अहम होता है बैन अलावा ताल्लुकात में, बजाय इसके कि हम उसके आउटकम्स देखें।
3: जी तो सामिन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो अब हम करते हैं सर से कुछ मजीद सवालात और अपने आखिरी मराहल में भी दाखिल होते हैं। सर, जमहूरियत की हम बात कर रहे थे, तो एक आम बंदा, यानी कि मैं भी एक आम बंदा हूँ, सुनने वाले भी हमारे काफ़ी आम लोग होंगे, तो सर ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुल्क की जमहूरियत कहाँ पर खड़ी हुई है और दूसरे मुल्क की जमहूरियत किस मुकाम पर खड़ी हुई है?
2: देखें, पहला जो अहम पहलू है वो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ जो इलेक्शंस हैं वो कितने फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और वो पीरियोडिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर उसमें इलेक्शंस के दौरान या ऐसा हो कि बेजाबतगियों के कुछ इल्ज़ाम आएं या कुछ ऐसा हो कि जिसमें लगे कि जी रिजीम जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रही, 5 साल मुकम्मल नहीं हो रहे, तो ये एक ऐसा नेगेटिव इम्प्रेशन मिलता है जैसे जमहूरी प्रोसेस में कुछ अवामिल जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं होने दे रहे। एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस लिहाज से जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना काम कर रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि एक शहरी जो है वो अपने ख्यालात और अपने एक्सप्रेशन के लिहाज से कितना आज़ाद है अपनी राय का इजहार करने में। वो राय जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं हो सकती, वो किसी नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर नहीं हो सकती, वो राय ये हो सकती है कि आप इनफरादी तौर पे किसी भी सोशल इशू के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर किस तरह की राय रखते हैं बगैर किसी और के सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाए, आप उसका इजहार कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ होगी वो ये होगी कि आपके जो मुल्क है उसमें जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि क्या कानून जो है वो सबको एक ही तरह से देख रहा है या कानून के लिए मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ तरह का आप उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे जमहूरी तकाजे पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि जमहूरियत में ऐसा होता है कि रूल ऑफ लॉ होता है और कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। चौथा जो सबसे अहम आप वेरिएबल देख सकते हैं वो ये है कि आपका प्रेस जो है वो कितना आज़ाद है अपनी जो आरा है, क्योंकि प्रेस की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अगर तो वो ये कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और बीच में कोई ऐसी फोर्सेस नहीं हैं जो हायल हों, तो मुल्क जमहूरी होगा। अगर आपके इसके साथ साथ जो है वो मिलिट्री सबॉर्डिनेट टू इलेक्टेड ऑफिशल्स है और बहुत से इदारे जो हैं वो अपने डोमेन में रह के काम कर रहे हैं, तो मुल्क जमहूरी तस्वर होगा। अगर इनमें से कोई भी एक वेरिएबल है, जैसा कि इलेक्शंस जो हैं वो 10-10 साल नहीं हो रहे, तो फिर आप कहेंगे कि रिजीम जो है वो अथॉरिटेटिव है। जैसा कि किसी एक सियासी जमात का अगर रूल के ऊपर कब्जा है, तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि जैसे रूल जो है वो अथॉरिटेटिव है या टोटलिटेरियन रूल है जिसमें टोटल कंट्रोल जो है वो एक सियासी जमात के पास है। इसके अलावा जो है अगर इलेक्शंस में लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिल रहे, तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि जैसे रिजीम जो है वो अथॉरिटेरियन है या डेमोक्रेटिक नहीं। सो इस तरह के और बहुत से वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप असेस कर सकते हैं कि कोई मुल्क जो है वो जमहूरी है या नहीं है।
1: जी सर, बिल्कुल ठीक। सर, अमूमन हमारे लोगों में ये तासर है कि लोग पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझते। अगर कोई बच्चा पॉलिटिक्स पढ़ने का नाम लेता है तो कह देते हैं कि नहीं, ये हमारी डोमेन नहीं है, ये कुछ और लोगों की डोमेन है। तो सर, आपके ख्याल से हर एक बंदे के लिए या हर एक तबके के लोगों के लिए पॉलिटिक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है?
2: देखें, हमें ये समझना पड़ेगा कि सियासत जो है वो एक सब्जेक्ट की हैसियत से, एक डिसिप्लिन की हैसियत से हमें पढ़नी चाहिए। उसकी वजूहात हो सकती हैं। हाँ, आपका मेरा इस बात के ऊपर डिबेट हो सकती है कि सियासत जो है वो एक नास्टी बिजनेस है, एक ऐसा काम है जो कि अमूमन तसव्वुर ये है कि वो अच्छा बिजनेस नहीं है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट होते हैं हर मुल्क में। तो हम इस फिनोमेनाज को क्यों पढ़ें, इन फिनोमेनाज को, और हम क्यों इन चीज़ों पर तवज्जो दें? लेकिन बात यह है कि बहुत से ऐसे फिनोमेनाज हैं जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं लेकिन फिर भी आप करते हैं। अगर हम मिसाल लें एक बायोलॉजी या बायोटेक पढ़ने वाले की, तो वो बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। अब बैक्टीरिया जो हैं वो जानलेवा भी होते हैं बाज़ दफ़ा, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्योंकि वो जानलेवा फेनोमेना है तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। इंसान को जो है वो हर तरह का नॉलेज जो है वो लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि अवैल में ऐसा होता था कि इंसान जो है वो पॉलीमैथ होते थे, मतलब वो हर तरह का नॉलेज लेते थे, क्योंकि आप एक सियासी तौर पे ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं और आपका और रियासत का जो रिश्ता है वो शहरी का और स्टेट का है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रियासत आपको देने की मुतहम्मिल हो सकती है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रियासत बदले में आपसे एक्सपेक्ट करती है। सो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की हैसियत से आप में सिविक सेंस होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होनी चाहिए कि आप जो है ना वो कानून की पासदारी को अपने लिए वाजिब समझें या फ़र्ज समझें, और साथ ही आपको कवानीन का पता भी होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, आपको सियासी जमातों के रोल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप पोलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं।
1: सर, UCP की अगर हम बात करें तो UCP अपना क्या रोल अदा कर रही है पॉलिटिक्स की स्टडी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में और किस तरह से पहुंचा रही है?
2: देखें, UCP में पूरा एक इदारा जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड IR जो है वो इसी कोशिश में है कि तमाम ऐसे तलबा जो कि इंटरेस्ट रखते हैं बैनुल अक्वामी अमूर में या सियासत में, उनको 4 साल डिग्री कराई जाए जिसको BS ऑनर्स कहा जाता है। और साथ ही 2 और पैरेलल प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें MPhil इंटरनेशनल रिलेशंस है और PhD इंटरनेशनल रिलेशंस है, कि आप एकेडमिकली किस तरह से जो बैनुल अक्वामी सियासत में जो है वो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, वो तब्दीलियां किन मुहरकात की बेस पे हो रही हैं, उनमें क्या क्या पाकिस्तान का किरदार हो सकता है या एकेडमिक्स का या स्कॉलर्स का किरदार हो सकता है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इन सियासी जो तनाजुर में तब्दीलियां हो रही हैं इनको समझने में और इनके ऊपर बात करने में। तो UCP का पूरा एक डिपार्टमेंट जो है वो इसी तगोदो में है, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स का डिपार्टमेंट है, कि किस तरह से लोगों में सिविक सेंस डिवेलप की जाए, उनमें बैनुल अक्वामी अमूर के बारे में आगाही जो है वो पैदा की जाए, और बहुत से ऐसे सियासी और समाजी मसाइल जो कि आज पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है उनको समझे बगैर हम उनका हल नहीं निकाल सकते। सो मेरा ये ख्याल है कि UCP का ये जो डिपार्टमेंट है ये इसी उसमें जहत में काम कर रहा है कि किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल शहरी जो है वो बनाया जा सकता है।
1: बहुत शुक्रिया सर, आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे इख्तिताम होता है। बहुत शुक्रिया आपका, पाए आपने बहुत कुछ सिखाया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है कि स्टूडियो से बाहर बैठे लोग जो कि सुन रहे होंगे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1: तो सामीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP, FM 92.6, UCP Ki Duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

मौसीकी के सुरोरताल सुरोरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की. ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की. तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6। महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Live Station of the Nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.